0: कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें।
1: ये था आज का नीति वचन। और श्रोताओ, इसी सुविचार के साथ आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम में, आकाशवाणी ईटानगर के FM अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और आज साल 2026 के मई महीने की 20 तारीख है और दिन है बुधवार। और श्रोताओ, हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेरों ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों को। और श्रोताओ, आपको ये भी बता दें कि हमारे पहले प्रसारण के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं HPT में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी डोले और तकनीकी अभियंता बिमल शर्मा। और श्रोताओ, मैं हूं आपकी रेडियो साथी वामिन सुम्पी। आइए श्रोताओ, अब आपको जानकारी देते हैं अब से लेकर सुबह 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की। सुबह 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। और 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह 9 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

सुबह 10 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 10:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, और 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

तो श्रोताओं, ये थे अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी। और अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये 3रा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी ईटानगर हिलो लुसिर पोल ग आलो हम निना ने यरनार होक गालो में केनाग में मेलन दिदाक नंगो दक्षा पेते नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होक हेरामोने आर्टिसंस ओके एज होम ने वेबर्स गद मलो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन लो कार्यकर्ता रखितु मुन गे कार्यकर्ता रखिदाक ओगो आर्टिसंस ओके वेबर्स गद मेला राष्ट्रपति भवन लो मुन्नम आगे न्योदे बागलो दूध ने गई बे इंदु बे इद बे नीनम ओनम ओक दिन सुरुना दुम बागो ले जिल्ला मुन गे तेलेंतम कातोम ता तुमलाद बे इजनमम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दोनपोल जाब मुदंग नाक अमला मेंतु प्रेसिडेंट में मेनला गुमिन होइन लोक निलुम नित नारु आर्टिसंस ओके वेबर्स गद्दम आगे दादी दो पति पहिला ओके पिल पाला ये लाहित बे इनाम लगा बे नरुए तुर्बुदाले जी रूलास का अमलासिन रोगो जीता तू मलो लेओमी रोपना ने इंडिया नॉर्डिक समित अम नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो लो यूरोप के गेकुबा अमला में पाजी तू ओस्लो सिटी हॉल लो कतिकबा अंबाद अगलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम नॉर्वे पीएम स्वीडन पीएम आइसलैंड पीएम डेनमार्क ओक पीएम पिनलैंड मुन नरु कबालो आलक जितु कबा बाद अगलो के दिन सुना आगोमाई जिक्का को कहीं नाम गद देखु टेक एंड इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी ओके डिजिटाइजेशन ग लंबा एम अलिजाब जिक्का को कहितु गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती परनायक मुमेला मुग इस्तेतम गलिन हुबा यारु दोब मुयम मुनु माइक्रो स्मॉल ओके मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई हिगिम पिर्दे यारु दोब मोकेंदो अमला मेंतु इंडिया होगो एमएसएमई एम पिर्दे दोब मोलिक तनमलो इस्तेत ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ग लागजुंब इलायेन ईशान इंटरनेशनल ग एमडी एंड सीईओ संतानु श्रीवास्तव ने मलो न्यू दिल्ली लो कार्यकर्ता रखेदुला गवर्नर में मिला अरुणाचल प्रदेश ग रिच नेचुरल रिसोर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग पोटेंशियल फॉरेस्ट प्रोड्यूस टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज ओके यूनिक कल्चरल हेरिटेज गद हिगे एंटरप्रेन्योरशिप ओके लोकल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट लगाब माज ब अलदे दो अमला मेंकेन जितु गवर्नर में मेंताला निजरिया में अनियम रिकिन हरामोने ओके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गद एमएसएमई लोक आइन मुरको पिलपाला ओके दोपाती पहिला ये दे दो अमलासिन मेंतातु मलो नरु पॉलिटिकल पार्टीज रूलोक रिप्रेजेंटेटिव्स गद्दम दुगदुला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सिंह म निर्वाचन भवन लो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग अम लो दुमगतु जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लीकेन कोयू ओके डेप्यूटी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सानिया कायम मुझे मुन्यसिन कबालो आलग जितु इलेक्टोरल रोल एम अलिब हृदय पार्दी दोब मदुला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इदाकलो काकिन जाब इगलाद मुदुकुला दिन सुरुना कतिक बाहिम बादुम गतु मेंकेना गोम हिम नुनु आकाश बानी इटानगर लोक तपादु मुग स्टेट होक परिपोता एम आलियाद कुब मोनाम लगाब मुदुला हायर एजुकेशन लो रिफॉर्म्स लादब ओक इजागे इंफ्रास्ट्रक्चर मंगोहिला लेनाम ग लेदम अल्लिब हिक्का नाम लगाब अरुणाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल ग नाइन काउंसिल मीटिंग अम इदाकलो एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोनाम कबाबो दुलक जितु कते कब

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नहाते समय हमेशा हमें शुरुआत पैरों से करनी चाहिए और सिर को अंत में धोना चाहिए, खास करके ठंड के मौसम में। जी हाँ श्रोताओ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अधिकतर लोग नहाते वक्त सबसे पहले अपने सिर पर पानी डालते हैं और कई बार आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। लोगों को लगता है कि ये नहाने का सही तरीका है, लेकिन आयुर्वेद में इस तरीके को सेहत के लिए ठीक नहीं माना गया है। आयुर्वेद में नहाने के दौरान पानी डालने की सही दिशा और क्रम को बहुत महत्व दिया गया है। गलत तरीके से नहाने से शरीर में वात पित्त और कफ दोष असंतुलित हो सकते हैं, जिससे सर्दी खांसी या त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऐसा करना क्यों है, इसका कारण क्या है।

जब आप पेड़ों पर पानी डालते हैं तो शरीर का तापमान धीरे धीरे बदलता है और खून का प्रभाव ऊपर की ओर यानी आपके सिर की ओर बेहतर होता है। इससे शरीर धीरे धीरे ठंडा या गर्म पानी सहन कर पाता है और उसके अनुसार संतुलित हो पाता है। और दूसरी चीज ये है कि सीधे सिर पर पानी डालने से रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स अचानक सिकुड़ सकती है, जिससे आपको सिर दर्द, माइग्रेन या बीपी बढ़ने का खतरा होता है और स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है। ऐसा होने से आपके ब्लड सर्कुलेशन तो प्रभावित होते ही हैं, हार्ट अटैक या दिमाग की नस फटने का खतरा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पे भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स तो आपने सुने ही होंगे बीपी बढ़ने या स्ट्रोक आने के कारण से जो होते रहते हैं। इसीलिए श्रोताओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम बातें कर रहे हैं कि नहाने का सही तरीका क्या है, कि हमें सिर से शुरू नहीं करना चाहिए, हमें पैरों से शुरू करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब आयुर्वेद के हिसाब से नहाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पैरों से अपने तलवों पर पानी डालना शुरू करना चाहिए। इसके बाद आप अपने थाईस पर, पेट पर, छाती पर और कंधों पर पानी डालें। फिर शरीर गीला हो जाने के बाद साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें और अंत में अपने बालों को धोइएगा ताकि केमिकल वाला पानी आपके चेहरे या पीठ के पोर्स को बंद ना करे। श्रोताओं, आयुर्वेद की माने तो नहाने के दौरान ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए और नहाने के बाद शरीर को पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए और नहाने के साथ साथ आप ठंडी हवा में जाकर सीधा मत बैठ जाइए। नहाने के बाद आप एसी के नीचे या पंखे के नीचे आप मत बैठिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप इसी तरीके को फॉलो करिएगा, क्योंकि ये तरीका आपकी त्वचा और शरीर के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।

प्यारे श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि हमने इतनी जो जानकारियां आपको दी है आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो श्रोताओं, चलिए आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे को यही तक रखते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक अलग टॉपिक के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: श्रोताओं का कार्यक्रम

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर और शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए जानते हैं, झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का ये दिन। 20 मई की अपनी ये अलग पहचान है, तो आइए जानते हैं इससे आज के दिन से जुड़ी बातों को।

ईयर 1498 में आज ही के दिन यानी 20 मई को पोर्टुगीज खोजकर्ता वास्को दी गामा भारत के मालाबार तट पर स्थित कलिकट, जिसे वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है, कलिकट के पास कपड़ तट पर पहुंचे थे। वास्को दी गामा केप ऑफ गुड होप से होकर समुद्री मार्ग के जरिए भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय यात्री बने थे।

यह 1873 में आज ही के दिन लेवाई स्ट्रॉस और जेकब डेविस को डेनिम पैंट्स को मजबूत बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर की कीलों रिवेट्स के इस्तेमाल का यूएस पैटेंट मिला, जिससे आधिकारिक तौर पर ब्लू जीन्स का जन्म हुआ। यह 1891 में आज ही के दिन थॉमस एडिसन ने अपने काइनेटोस्कोप का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ये आधुनिक मोशन पिक्चर कैमरे और फिल्म प्रोजेक्टर का अग्रदूत बना यानी कि प्रीकर्सर बना।

आज ही के दिन यह 1965 में कैप्टन अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। यह 2018 में आज ही के दिन ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस हैरी ने अमेरिकी एक्ट्रेस मेगन मार्कल से सेंट जॉर्ज के चैपल विंडसोर कैसल में शादी रचाई थी। ये शादी रॉयल फैमिली की अन्य शादियों से काफी अलग रही, जिसमें अफ्रीकी और अमेरिकी दोनों कल्चर के साथ विवाह समारोह को पूरा किया गया।

इटली के फेमस खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस का निधन ईयर 1506 में आज ही के दिन यानी 20 मई को हुआ था।

विश्व माप दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को मनाया जाता है, यानी आज के दिन। ये दिन वैज्ञानिक खोज, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माप यानी मेजरमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 मई 1875 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जहां 17 देशों द्वारा ऐतिहासिक मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया। और ये इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय भार एवं मापन ब्यूरो BIPM और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन OIML द्वारा आयोजित किया जाता है।

और आज ही के दिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये वार्षिक दिवस परागणकों यानी कि पॉलिनेटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक मधुमक्खी पालन के पायनियर एंटन जेंसा के जन्मदिन को रेखांकित करता है। चाइना में 20 मई को यानी आज ही के दिन को अनऑफिशियल वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 520 इसका उच्चारण मंडारिन भाषा में आई लव यू वाक्यांश के उच्चारण से काफी मिलता जुलता है।

तो श्रोताओं, इतिहास के पन्नों से आज के लिए बस इतना ही, और अब कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आगे आपका मनोरंजन करवाते हैं हम कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम। आप इनके आगे के कार्यक्रम को सुन पाएंगे आकाशवाणी टानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओ, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है सदाबहार। और इस कार्यक्रम में हम पहले आपको बताएंगे आज के मौसम का हाल अरुणाचल में कैसा रहेगा। तो आइए श्रोताओ, जानते हैं आज ईटानगर में वेदर कैसा रहेगा। आज ईटानगर में सुबह धूप रहेगी, लेकिन दोपहर बाद गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री। हवा की गति बहुत हल्की रहेगी, शांत मौसम रहेगा, आर्द्रता 80% रहेगी। और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावना सिर्फ 12 से 24% है। 11 बजे के बाद गरज के साथ बारिश शुरू हो सकती है। आइए जानते हैं ईस्ट अरुणाचल में, यानी कि पूर्वी अरुणाचल में कैसा रहेगा आज का दिन। आज पूर्वी अरुणाचल में भी सुबह धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा और न्यूनतम रहेगा 31 डिग्री। हवा की गति हल्की रहेगी, 3 मील प्रति घंटा रहेगी। आर्द्रता रहेगी 80%।

पश्चिम अरुणाचल यानी वेस्ट अरुणाचल में जानते हैं आज मौसम का हाल। आज पश्चिमी अरुणाचल का मौसम दो तरह का रहेगा। कुछ इलाकों में तेज धूप रहेगी और गर्मी रहेगी तो कुछ जगहों पर दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। गर्मी वाले इलाकों की बात करें तो तापमान रहेगा 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 31 डिग्री। और जिन जगहों पर बारिश होने की संभावना है उस जगह की तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। और गर्म इलाकों में यूवी इंडेक्स बहुत तेज है और तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है, तो दोपहर में बाहर ना निकले। अगर आप गर्मी वाले इलाकों में है तो दोपहर में बाहर ना निकले, पानी पीते रहे और धूप से बचे। लेकिन बारिश वाले इलाकों में दोपहर 11 बजे के बाद छाता लेकर ही चले क्योंकि बहुत तेज बरसात हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है और सुबह का मौसम साफ रहेगा, तो बाहर का काम आप सुबह में ही निपटा लीजिए क्योंकि दोपहर 11 बजे के बाद आपको छाता लेकर ही निकलना है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो सकती है। तो श्रोता, वेदर अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। आपसे थोड़ी देर में हम आपको हमारे लोकल डेली डी अरुणाचल टाइम्स से कुछ न्यूज हेडलाइंस सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कार्यक्रम सदाबहार में आप आनंद लीजिए इन सदाबहार गीतों का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार और आइए रुख करते हैं अब हमारे लोकल डेली दी अरुणाचल टाइम्स की ओर और आपको सुनवाते हैं कुछ न्यूज हेडलाइंस।

अरुणाचल प्रदेश की रूबी लोम्बो को 23 से 26 जून तक उज्बेकिस्तान के तशकंद में होने वाली एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप के लिए नेशनल टीम के कोच में से एक के तौर पर चुना गया है। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI ने 15 मई को एक लेटर में कहा कि वो एशियन चैंपियनशिप के लिए चुने गए 5 कोच और सपोर्टिंग स्टाफ में से एक हैं। चुने गए दूसरे ऑफिशियल्स में कोच कुलवंत सिंह, आर्मी एडवेंचर विंग टेक्नीशियन एन लोकेश कर्नाटक से, कोच प्रशांत भट्ट उत्तराखंड से और विवेक कुमार मसर NS पटियाला शामिल हैं। दिबांग वैली जिले के अपने गांव की रहने वाली लोम्बो एक असिस्टेंट MTB कोच है और अभी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम कर रही है। वो अभी राजीव गांधी हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर सिलारो NCOE में पोस्टेड है। कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के CBI को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने का निर्देश देने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को हटाया क्यों नहीं गया है। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही बड़ा मजाक है। रमेश ने कहा कि 6 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने CBI को उन आरोपों की शुरुआती जांच शुरू करने का निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री के परिवार को जनवरी 2015 से दिसंबर 2022 तक 10 सालों में 1,270 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, जो सीधे हितों के टकराव का मामला था। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और टूरिज्म राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भरोसा दिलाया कि यहां फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में पेंडिंग कामों को तेजी से पूरा करने और इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। एक्टिंग और स्क्रीन प्ले डिपार्टमेंट से जुड़े जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में बहुत ज्यादा देरी को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD को एसेट्स को पूरा करने का प्राथमिकता देने और कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। मंगलवार को मंत्री PD सोना और दसंगलो पुल, डिप्यूटी कमिश्नर लोबसंग सिरिंग और गिजुम ताली के इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों और पेंडिंग कामों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट का दौरा किया, जिससे बाद में इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के सामने उठाया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश के कृषि और संबंध मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान NERIWALM को IIT स्तर के उत्कृष्टता केंद्र में बदलने का आह्वान किया। मंगलवार को आसाम में NERIWALM की छठी शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए वांगसू ने कहा, संस्थान को केवल एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हितधारकों से NERIWALM के लिए एक बहुत बड़ी और अधिक परिणामी राष्ट्रीय भूमिका की कल्पना करने का आग्रह किया है। मंत्री ने भारत के गहराते जल संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में लगभग 70% जल निकायों को प्रदूषित बताया गया है, जिसमें से 323 नदियों में 350 से अधिक प्रदूषित हिस्सों की पहचान की गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल गुणवत्ता सूचकांक स्कोर 88.12% दर्ज किया गया है, जो कि 70.28% के संयुक्त राष्ट्रीय स्कोर से काफी अधिक है। राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO पवन कुमार सेन ने कहा कि इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेसी पक्का करने में पॉलिटिकल पार्टियां अहम रोल निभाती हैं और उन्होंने सभी पार्टियों से रिवीजन प्रोसेस को असरदार तरीके से चलाने के लिए हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट्स BLAs अपॉइंट करने की अपील की है। CEO ने मंगलवार को इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के लिए राज्य की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग 16 सितंबर 2025 को हुई मीटिंग का फॉलोअप था और SIR की हाल ही में अनाउंस की गई फेज 3 एक्टिविटी का हिस्सा थी। 16 सितंबर 2025 को हुई मीटिंग में पहले जोर दिया गया था कि पॉलिटिकल पार्टियों को 30 सितंबर 2025 तक BLAs अपॉइंट करने हैं। इस बारे में बताते हुए CEO ने मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के कम आने और अब तक अपॉइंट किए गए BLAs की संख्या में मामूली बढ़ोतरी पर चिंता जताई।

और शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने राज्य के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEIS में हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMUSHA के तहत चल रहे और पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करने के लिए मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल APSHEC की नवी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सोना ने RUSA और PMUSHA स्कीम के तहत राज्य में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार से मिले फंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक रिसोर्स की कमी वाला राज्य होने के नाते हमें फंड का किफायती इस्तेमाल करना चाहिए और क्वालिटी और क्वांटिटी बनाए रखते हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए।

श्रोताओ, न्यूज हेडलाइंस में आज के लिए बस इतना ही और कार्यक्रम सदाबहार में भी आज के लिए बस इतना ही। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज और शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अभी संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ऑस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बुले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
5: India is accelerating towards universal health coverage.
6: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
5: Pandemic preparedness and emergency responses.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
9: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
6: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
10: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
11: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
12: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
13: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
14: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द। नवभारत टाइम्स में है, आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख। दैनिक जागरण में है, रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की

0: के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना पहली जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज इटालियन काउंटरपार्ट जॉर्जिया मेलोनी इन रोम टुडे। टू लीडर्स टू डिस्कस वेज टू बूस्ट कोऑपरेशन ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड रिव्यू जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू रोल आउट अन्नपूर्णा स्कीम प्रोवाइडिंग 3000 रुपीज पर मंथ टू वीमेन एज 25 टू 60 ईयर्स फ्रॉम जून 1st। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन सेज सिमल्टेनियस लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस कैन सेव नियरली 7 लाख करोड़ रुपीज एंड इंक्रीज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ बाय 1.6%। DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
3: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही

श्रोताओं आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात तथा मॉर्निंग न्यूज और नॉर्थ ईस्ट न्यूज शिलांग केंद्र से। और श्रोताओं आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोता वरुण एफएम पर वक्त हो चला है कार्यक्रम हेलो ईटानगर का, तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।
1: हेलो ईटानगर।

यार श्वेता, हो सकता है कि आप में से कई लोग अब नए जॉब्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो वैसे में ये बेहद जरूरी है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी में अपने डॉक्यूमेंट सही करना ना भूलें और आपकी सीवी या रिज्यूमे एकदम सही होनी चाहिए। पर अक्सर ये होता है कि कई सारे लोगों को सीवी और रिज्यूमे में अंतर पता नहीं होता है, तो चलिए आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि सीवी और रिज्यूमे में क्या अंतर होता है।

रिज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सारांश यानी कि समरी। ये एक छोटी और सीधी डॉक्यूमेंट होती है। इसमें आप अपने कार्य अनुभव यानी कि आपके वर्क

एक्सपीरियंस और आपकी कौशल यानी आपके स्किल्स उन्हें आप जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी जरूरतों के अनुसार आप उसमें डाल सकते हो। और रिज्यूमे को आप प्राइवेट सेक्टर या कॉरपोरेट नौकरियों के लिए आप अप्लाई करोगे।

वहीं सीवी की बात करें तो सीवी यानी कि करिकुलम वीटे, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जीवन की यात्रा यानी कि कोर्स ऑफ लाइफ। इस डॉक्यूमेंट में आप अपने डिटेल्स इन डेप्थ देते हो, यानी कि गहराई से भरा हुआ दस्तावेज होता है ये। इसमें आपकी करियर की शुरुआत से लेकर अब तक की सभी उपलब्धियां, जैसे रिसर्च पेपर हो गया, आप सेमिनार्स कितने अटेंड किए हैं, पब्लिकेशन आपकी हुई है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप क्रम अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यदि आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या साइंटिस्ट या मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इनमें सीवी का उपयोग करना पड़ेगा, जहां आप अपनी डिटेल अपने बारे में आप डिटेल से बता सकते हैं।

श्वेता, हम बात कर रहे थे रिज्यूमे और सीवी के अंतर की। तो आपको जितना समझाया है, अगर आप उसी में भी उसमें भी कंफ्यूजन है तो चलिए इससे भी सरल भाषा में आपको बताते हैं। रिज्यूमे की बात करें तो लंबाई रिज्यूमे आप में ब्रीफली आप रख सकते हैं अपने डिटेल्स को, बड़ी ब्रीफ में, एक या दो पेज में। लेकिन सीवी की बात करें तो आपको विस्तार में सब कुछ बताना है, आपके पूरे डिटेल्स देने हैं, दो पेज या उससे भी लंबा हो सकता है। और उद्देश्य की बात करें तो आप नौकरी के अनुसार, जिस नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अनुसार अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को आप हाईलाइट करिएगा अपने रिज्यूमे में। लेकिन सीवी की बात करें तो आपकी शिक्षा, शोध और करियर का पूरा पूरा इतिहास आपको बता देना है अपने सीवी में। और कंटेंट की बात करें तो रिज्यूमे में आप केवल वही जानकारी दीजिए जो आपको जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी, उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सीवी की बात करें तो आपकी एजुकेशन, डिग्री, रिसर्च, पब्लिकेशन और आपको जितने अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है, उसे विस्तार में आप अपने सीवी में बयां करिएगा। और चेंजेस या कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो आप अपने रिज्यूमे में हर नई नौकरी के हिसाब से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने स्किल्स बदलते रहने पड़ेंगे। लेकिन सीवी की बात करें तो ये स्थिर रहता है। आप बचपन से लेकर अब तक जितनी भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं वो वही रहता है, केवल नए अचीवमेंट्स एड ऑन होते रहते हैं आपके सीवी में। और आखिर में अगर फील्ड की बात करें तो आपको किस फील्ड में आपको रिज्यूमे या सीवी की जरूरत पड़ेगी, तो रिज्यूमे को आप कॉरपोरेट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर्स में आप यूज कर सकते हैं। ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया या फिर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन्हें यूज करते हैं। और सीवी की बात करें तो ये एकेडमिक्स, रिसर्च वर्क, मेडिकल फील्ड के लिए जरूरत पड़ती है, या फिर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अगर चाहिए तो उसमें आपको सीवी की जरूरत पड़ेगी।

और श्रोताओ, रिज्यूमे और सीवी को छोड़ के एक और चीज है, अगर उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो तो वो है बायोडाटा। बायोडाटा की बात करें तो यानी कि बायोग्राफिकल डेटा, ये आपके पेशेवर जानकारी यानी आपके ऑक्यूपेशन या वर्क एक्सपीरियंस से ज्यादा आपकी व्यक्तिगत जिंदगी, जैसे कि आपकी जन्म तिथि, आपका धर्म, वैवाहिक स्थिति, लिंग, रंग रूप, आपका पता और परिवार के बारे में जानकारी, इन सारी चीजों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। और आप इसका इस्तेमाल इसे फील्ड में, कोई भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, नौकरी के लिए, कहीं भी के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, शादी के लिए खास करके इस्तेमाल किया जाता है और शिक्षा के लिए भी। तो श्रोताओ, कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही। अब आगे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौते होने पर संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमानों को संचालन रोक दिया गया था। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था। इसके बाद इकाई को सेवा योग्य घोषित किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पे। अरुण एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोता, अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का, तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को कुछ बॉलीवुड गपशप के साथ। भारत की पहली 200 करोड़ी फिल्म का खुमार सरहद पार तक छाया हुआ है और इसीलिए अब 17 साल बाद इस फिल्म के लिए पूरा थिएटर किराए पर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के एक फाउंडर फरजा मजीद ने एक्स पर एक पोस्ट करके घोषणा की कि 24 मई को सैन फ्रांसिस्को में बॉलीवुड पहली 200 करोड़ी फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने पूरा थिएटर किराए पर लिया है। ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर डबल सेंचुरी मारी थी। जी हाँ दोस्तों, फरजा मजिद, जिनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वे सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने सैन फ्रांसिस्को में 250 सीटों वाला एक थिएटर किराए पर लिया है ताकि अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थ्री इडियट्स को देखा जा सके। उन्होंने आगे कहा है कि ये भारत की पृष्ठभूमि पर बनी एक बहुत ही प्यारी फिल्म है जिसमें तीन दोस्त ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में आगे क्या करना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ठहराव से गुजर रहे हैं, आपको कुछ प्रेरणा चाहिए या आप बस थोड़ा हंसना चाहते हैं, तो आप जरूर आइए और ये फिल्म देखिए। और एक्स पर पोस्ट करते हुए वो आगे ये कहते हैं कि ये स्क्रीनिंग रविवार को यानी कि 24 मई को सैन फ्रांसिस्को के मरीना थिएटर में होगी और हर व्यक्ति के लिए एक टिकट। फिल्म में सबटाइटल भी होंगे। अगर आपने ये फिल्म पहले कभी नहीं देखी है तो आपको इसे देखना जरूर चाहिए। 203 इडियट्स राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित ये फिल्म, जिसमें आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। यह फिल्म आईआईटी के गलियारों से लेकर असल जिंदगी की चुनौतियों के उनके सफर को दिखाती है और यह फिल्म बॉलीवुड की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। तो आयुष, आपको सुनवाते हैं इस फिल्म के कुछ गीतों को।

श्वेता, हम बढ़ते हैं हमारे अगली अपडेट की ओर। श्वेता, ओटीटी के दौर में आज हर कोई नए किरदार निभा रहा है और नए प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। वहीं सितारे भी अब बड़े बड़े पर्दे से हटकर ओटीटी पर अपनी फिल्में और सीरीज लेकर आ रहे हैं। और इस बीच एक नई फिल्म आ रही है जिसमें सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस का धमाकेदार कमबैक होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है वाइव। ड्रोंगो फिल्म्स के बैनर तले कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा प्रोड्यूस की गई वाइव में कुणाल खेमू, प्रीति जिंता, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर लीड रोल में नजर आएंगी। हाल ही में इस फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। वाइव दो गहरे दोस्तों की कहानी है जिनकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब वे अनजाने में एक ऐसे खतरनाक हालात में फंस जाते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने आज अपनी हाई स्टेक्स एक्शन कॉमेडी फिल्म वाइव की थिएटर रिलीज डेट का ऐलान किया है। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कुणाल खेमू और चिराग निहलानी द्वारा डोंगा फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है और फिल्म को कुणाल खेमू ने लिखा और निर्देशित किया है। इसके अलावा वह फिल्म का हिस्सा भी है। इस फिल्म के साथ ही प्रीति जिंटा भी वापस आ रही है। हालांकि ये प्रीति का कमबैक फिल्म नहीं है, उनकी एक दूसरी फिल्म है जिसका नाम है लाहौर 1947। इस फिल्म की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन अब इसी बीच ये फिल्म भी प्रीति जिंटा की झोली में है जिसमें प्रीति के साथ कई और किरदार भी हैं। और आपको बता दें कि वाइव सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर भी रिलीज होगी। तो आइए श्रोताओ, अब आपको सुनवाते हैं प्रीति जिंटा पर फिल्माए गए कुछ उनके पुराने गीतों को।

साउथ के सुपरस्टार प्रभास इस वक्त बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। उनके पास इस वक्त एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम जल्द ही खत्म करने वाले हैं। द राजा साहब की रिलीज के बाद स्पिरिट और कल्कि 2 और फौजी इन फिल्मों पर भी काम किया जा रहा है। इस साल फौजी को भी रिलीज करेंगे पर अब तक इस पर कोई अपडेट आई नहीं है। दूसरी ओर कमल हसन और अमिताभ बच्चन पहले ही कल्कि 2898 AD के सीक्वल का काम शुरू कर चुके हैं। इसी बीच खूंखार विलन सुप्रीम यास्किन का किरदार निभा रहे कमल हसन ने एक बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में पता चला है कि कमल हसन ने प्राइवेट चार्टर और लग्जरी ट्रैवल को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया है। जी हां, उन्होंने एक आम इकोनॉमी फ्लाइट ली और सीधा कल्कि 2 की शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक्टर ने कोई भी बड़ी मांग नहीं की है। फिलहाल सीनियर एक्टर के इस बड़े कदम की हर तरफ तारीफ की जा रही है। एक्टर के इस बड़े फैसले से क्लियर होता है कि उनका पूरा फोकस शूटिंग और कहानी पर ही है, न कि सुख सुविधाओं पर। अगले साल यानी कि 2027 तक कल्कि फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे ही प्रभास दूसरी फिल्मों की शूट से फ्री हो जाते हैं। हाल ही में मेकर्स ने कंफर्म किया था कि फिल्म में संतोष नारायण की फिर से एंट्री हो गई है। उन्होंने म्यूजिक डिपार्टमेंट को संभाला है। कल्कि 1 फिल्म जो है वो साल 2024 में रिलीज हुई थी, जो उस साल की पहली ब्लॉकबास्टर फिल्म थी। साथ ही पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी किया था। इस बार दीपिका पादुकोण नहीं दिखेंगे पर कमल हसन का बहुत छोटा रोल था, बस आखिर में उनका लुक रिवील होता है। लेकिन इस बार विलन पर ही कहानी आगे बढ़ेगी। अब शूटिंग के लिए एक्टर को जाना था लेकिन उन्होंने लग्जरी ट्रेवल को पूरी तरह से मना कर दिया है। तो श्रोताओ, आइए आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और बॉलीवुड अपडेट। इम्तियाज अली की दुनिया में प्यार शायद ही कभी सिर्फ एक एहसास होता है, ये गुजरते पलों, अधूरी बातचीत और उन यादों में जिंदा रहता है जो सालों तक लोगों के साथ रहती है। अपनी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा, इसमें फिल्म मेकर ने ऐसी ही एक कहानी को दिखाया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रायना और शर्वरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये एक इमोशनल और अलग सेंटिमेंट वाली एक्सपीरियंस देने वाली है ये फिल्म आपको। मेकर्स ने अपने टीजर और गाने को मिले रिएक्शन के बाद अब फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है, जो प्यार, तड़प और अपनेपन से बनी एक दुनिया की झलक दिखाता है। देश के बंटवारे के वक्त हुआ प्यार क्या 78 साल बाद भी वैसा ही रहता है? इसी सवाल के आसपास फिल्म की लव स्टोरी बुनी गई है। ये फिल्म एआर रहमान, इरशाद कामिल और इम्तियाज अली की मशहूर टिकरी को एक बार फिर साथ लाती है, जिनके सहयोग से पिछले कुछ सालों में कई यादगार साउंडट्रैक बने हैं। ट्रेलर में फुल ऑफ इमोशन, रोमांटिक म्यूजिक और एक दर्द भरी कहानी है, जिसमें एक अनोखी प्रेम कहानी को पिरोया गया है। ट्रेलर के बारे में बात करते हुए इम्तियाज अली ने कहा है कि हमने पीछे क्या छोड़ा है, वो कौन सा प्यार है जिसे हम समय की नदी पार करते हुए अपने दिलों में संजोए रहे हैं। मैं वापस आऊंगा ये फिल्म है प्यार और तरफ की एक निजी कहानी, जो देश के बंटवारे के 78 साल बाद भी किसी के दिल में जिंदा रही। ये उन सैकड़ों कहानियों की भी एक गूंज है जो मैंने उस पुरानी पीढ़ी से सुनी, जिन्होंने बंटवारे को अपनी आंखों से देखा है। और ये फिल्म आज के नजरिए से एक जोशीली पीढ़ी के दिलों की धड़कनों पर रोशनी डालती है। और ये फिल्म आने वाली है 12 जून को सिनेमाघरों में। तो आइए श्रोताओं, इस फिल्म के कुछ गाने रिलीज हुए हैं तो आपको वो सुनवा देते हैं।

और श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आपसे ये थोड़ी देर में यानी कि ठीक 10 बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said

0: यानी कि रेडियो ऑन डिमांड का, तो आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।

प्यारे श्रोताओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में, जहां आप मैसेजेस भेजकर अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें देते हैं और हम आपका सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। तो आइए श्रोताओ, शुरू करते हैं हमारे पहले मैसेज से। पहला मैसेज हमें भेजते हैं रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लकी, जो रहते हैं गोलाघाट आसाम में, और वो सुनना चाहते हैं गीत शायद मेरी शादी का ख्याल, और इस गीत को वो डेडिकेट करते हैं अपने कुछ दोस्तों को, जिनके नाम हैं अमोल, बिमोल, बाइकोन और जोगिंदर। और हमारे इन सारे प्यारे लिसनर्स के लिए आइए हम प्ले करते हैं आपका पसंदीदा गीत।

श्रोताओ, आइए लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजते हैं टेंसन क्रो, सरलो एक क्रो जो रहते हैं लांगकांग सम कार्बी आंगलोंग आसाम में। और हमारी ये दो लिसनर सुनना चाहते हैं गीत जिए तो जिए फिल्म साजन। तो आइए हमारे इन प्यारे लिसनर्स को, बाकी सारे लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, आप सभी के लिए हम प्ले करते हैं इस गीत को।

चलिए श्रोताओ, लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये अगला मैसेज हमें जो भेजते हैं, उन्होंने अपना नाम पता तो नहीं लिखा है, उन्होंने बस एक सॉन्ग रिक्वेस्ट करी है और वो सुनना चाहते हैं फिल्म बॉर्डर का सदे से आते हैं गीत। तो चलिए हमारे सारे लिसनर्स के लिए हम ये गीत प्ले करते हैं।

आयुष श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज की ओर। यह मैसेज हमें भेजते हैं जोगिंदर रोमपी, धर्मकिरी रोमपी और सोनाली इंतिपी, और ये रहते हैं सरीहजन कार्बी अंगलोंग आसाम में, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सॉन्ग मैं तो जाऊं वनवास फिल्म एक पल से, और वो डेडिकेट करना चाहते हैं इस गीत को अपने सारे दोस्तों को जिनका नाम है अमाल बासु मातरी, पाइकोन मुंडा, रमेश पात्रो, रूनू पात्रो और सभी सुनने वाले श्रोताओं को। और साथ ही ये मैसेज दे रहे हैं, कहते हैं कि एफएम अरुण एफएम दीदी जी, आपकी आवाज बहुत मीठी है और मुझे गीतों से ज्यादा आपकी आवाज पसंद है। तो हमारे इतने प्यारे लिसनर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ।

आपको मेरी आवाज अच्छी लगी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपका मनोरंजन बड़े अच्छे से कर पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए हमारे इन प्यारे लिसनर्स के लिए और बाकी सारे श्रोताएं जो हमें सुन रहे हैं, आप सबके लिए प्ले करते हैं इनका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आप सभी के चहेते कार्यक्रम को, यानी कि रेडियो ऑन डिमांड को। तो चलिए लेते हैं हमारा अगला मैसेज। यह मैसेज हमें भेजते हैं दुर्गेश नागनपुरे एंड फैमिली, जो रहते हैं जसवरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और वो सुनना चाहते हैं उमराव जान फिल्म का ये गीत सलाम। और इस गीत को वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने सारे प्यारे दोस्तों को, जिनका नाम है भाईकोन मुंडा, रमेश पात्रो, अमल बिमल बासुमतरी। तो आइए, हमारे इन सारे प्यारे लिसनर्स के लिए हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें भेजते हैं लखीमपुर आसाम से। इन्होंने, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने बस एक सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है, जीने दे। तो श्रोताओं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने रिक्वेस्टेड सॉन्ग को भेजते हैं तो गाने के नाम के साथ साथ मूवी का नाम भी जरूर भेजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जिनके बोल एक जैसे होते हैं। तो आप अगर फिल्म का नाम भेजेंगे तो हमें आसानी होगी हमारे इस कार्यक्रम में आपके फेवरेट गाने को प्ले करने की। तो फिलहाल हमारे इस प्यारे से लिसनर्स जो लखीमपुर में हैं, लिसनर को हम सुनवा देते हैं फिल्म तेरे नाल लव हो गया से ये सॉन्ग जीने दें।

चलिए लेते हैं हमारा अगला मैसेज। ये मैसेज हमें भेजने वाले का नाम और पता दोनों नहीं है, उन्होंने बस सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। वो है फिल्म हैप्पी बैंग जाई की से आशिक तेरा सॉन्ग। तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

प्यारे श्रोताओं, आइए लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम का आखिरी मैसेज। ये मैसेज हमें भेजते हैं अमाल बासुमतरी, जो रहते हैं आसाम में, और वो सुनना चाहते हैं गीत तुमको देखा तो, और वे सॉन्ग को डेडिकेट करते हैं बाकी सारे लिसनर्स को। तो अमाल जी और हमारे बाकी सारे लिसनर्स के लिए हम प्ले करते हैं आपका ये रिक्वेस्टेड सॉन्ग।

तो श्रोताओ, इसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का पहला ट्रांसमिशन। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद हमारे दूसरे ट्रांसमिशन के लिए आप सबके साथ जुड़ेंगे आरजे दुनिया। तो अब मैं यानी कि आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी आपसे इजाजत लेती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

0: जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोने के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया कि दोनों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं नहीं करती हो और किसी भी सरकारी नौकरी कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लोगों का ऑरेंज अलर्ट किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, in another post, the Prime Minister thanked the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening. Mr. Modi said that the deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. He added the Indian diaspora continues to make the nation proud across the world. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ सुम्पी के साथ। उम्मीद करती हूँ RJ सुम्पी के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक और सुहाना रहा होगा। अब इस सफर को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी RJ तुन्य। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। रोजाना की तरह आज भी इस सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें।

दोस्तों शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा और सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हर गीत एक जज्बा है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल किसी कहानी का हिस्सा। तो चलिए ऐसे ही एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत आप सुन पाएंगे क्रिस फिल्म का चोरी चोरी चुपके चुपके, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर, और आप आनंद ले पा रहे हैं कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। उम्मीद करते हैं दोस्तों, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए गीतों का आप इन्जॉय कर रहे होंगे। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही आपके पास कोई सुझाव हो इस कार्यक्रम को और बेहतर और एंटरटेनिंग बनाने का, तो आप वो भी हमें सुझाव दे सकते हैं। आप हमें मैसेज लिखकर भेज सकते हैं इस नंबर पर 9436887808। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9436887808, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बादशाह फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम तो दीवाने हुए, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज में।

0: दोस्तों बादशाह फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म लहर यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो चलिए दोस्तों, हिंदी फिल्म में गानों से थोड़ा ब्रेक लेते हुए एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।
1: Hello everyone, I'm Kamsan, your host for today, and for this session, I want you to sit back, relax, and let me play you some amazing tunes. But first of all, welcome to the Western Music Program, your space for timeless classics, soulful ballads, and fresh tracks that capture the true spirit of Western music, only on Akashvani Itanagar. For the first track of the day, it is called Picture You by the new rising star Chappell Roan. The song sounds like tracing the memory of someone you can't forget. So let the world fade out and let this one in. Here's Picture You, please enjoy.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Olivia Rodrigo's breakout single called Driver's License is up next. This heart-wrenching song, written by Olivia when she was only 17 years of age, perfectly depicts her artistry and talent at

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that he's looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially.
3: Honorable Vice Chairperson, APSAW, Srimati Hyomai Tosik. Srimati T.P. Loy, Director WCD Department. Srimati Gumbi.

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, जहां दोस्तों अक्सर गाने सुनते ही हम सोच लेते हैं कि ये किसी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन हर सुर, हर नुकमा, हर नगमा फिल्मी दुनिया से नहीं होता। कुछ ऐसे गाने जो फिल्म के पार्ट नहीं होता, उन्हें ही हम नॉन फिल्म सॉन्ग्स कहते हैं। ये किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या म्यूजिशियन की अपनी ही रचना होती है। और ऐसी एक आर्टिस्ट है अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों से निकला एक आवाज जो दिल को छू जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिंगर और सॉन्ग राइटर ताबा चाके की। नेचर लवर, स्टोरी टेलर और म्यूजिशियन ताबा चाके अपने सॉल्फुल लिरिक्स और सूदिंग वॉइस के लिए जाने जाते हैं। उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं, एक इमोशन है जहाँ हर लाइन में जिंदगी, प्यार और सिंप्लिसिटी बस जाती है। तो चलिए ताबा चाके की आवाज में सुनते हैं तू है कहाँ एल्बम का टाइटल ट्रैक।

0: जाना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ये मेरी जिंदगी और ऐसी रहेगी।
1: एक तुम ही आर्टिस्ट नहीं हो यार, पूरी दुनिया में कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं
2: होगा तुम्हें।
3: मुझे रोकने वाला तू है कौन? अमाल मलिक,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं कुछ खूबसूरत हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। और पहला गीत आप सुन पाएंगे ऊंचाई फिल्म का खूबसूरत गीत केती को। ये गाना हमें पहाड़ों की ठंडी हवा और बचपन की मासूमियत का फील देता है। इस फिल्म में लेजेंड्स जैसे अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेंगजोंपा ने दोस्ती और जिंदगी के सफर को एक अलग ही ऊंचाई दी है। केती को गाना इनोसेंस और बॉन्डिंग का सिंबल है, जैसे दोस्ती में थोड़ी शरारत, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और बहुत सारा प्यार। तो आइए जिंदगी की ऊंचाइयों को सेलिब्रेट करते हुए सुनते हैं केती को का ये प्यारा सा सफर।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग आप सुन पाएंगे कुरुक्षेत्र फिल्म से बंधन चले, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही नॉर्थ ईस्ट परिचय कार्यक्रम का ये अंक ही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Earlier today, PM Modi said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint article written by Prime Minister Narendra Modi and his Italian Giorgia Meloni, the two leaders highlighted that relations between the two countries have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership rooted in the values of freedom, democracy, and a shared vision for the future. The leaders noted that at a time when the global order is undergoing profound changes, the India-Italy partnership is being guided by regular exchanges at the highest political and institutional levels. Defence Minister Rajnath Singh today held a meeting with South Korean counterpart Ahn Ju-bak in Seoul. During the meeting, they discussed ways to further deepen India-South Korea defence industry and strategic cooperation, with a shared commitment towards regional peace, stability and technological collaboration. In a social media post, Mr. Singh said, "It was a highly productive meeting as India and South Korea exchanged agreements on promoting defence cyber cooperation. The MOU was exchanged between the National Defence College of India, the Korea National Defence University and the UN Peacekeeping Corporation." India has taken another important step towards strengthening its indigenous defence capabilities under the Atmanirbhar Bharat initiative. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully completed the final development trials of the unmanned aerial vehicle launched precision-guided missile, marking a significant achievement for the country's defence sector. The trials were conducted in both air-to-ground and air-to-air modes at the DRDO test range near Kurnool in Andhra Pradesh. The missile was developed by Research Centre Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO laboratories.

0: दोस्तों, अभी आपने सुना आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो आइए थोड़ा सा वक्त पीछे ले चलते हैं और चलते हैं उन गानों की ओर जहां शोर नहीं सिर्फ एहसास हुआ करते थे। और आज के हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गीत के साथ जिसने माधुरी दीक्षित को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो माधुरी दीक्षित ने अबोध फिल्म के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी, लेकिन उसे असली सक्सेस मिली फिल्म तेजाब से। तो चलिए सुनते हैं तेजाब फिल्म का ये आइकॉनिक गाना 1-2-3 अलका याग्निक की आवाज में।
1: जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
2: कैसे?

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। दोस्तों, अगर बात करें हिंदी सिनेमा के 60s, 70s और 80s के दशक के, तो कुछ फिल्में अपने वक्त से काफी आगे मानी जाती थी। और एक ऐसे ही फिल्म थी गाइड, जो 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म में हमें मिलते हैं हिंदी सिनेमा के सारे पहचाने हुए रंग, खूबसूरत लोकेशंस, गीत संगीत, एक चार्मिंग हीरो और एक लाजवाब हीरोइन। लेकिन गाइड सिर्फ इन चीजों तक सीमित नहीं रही। इस फिल्म ने उस दौर के दर्शकों को एक ऐसी महिला दिखाई जो अपने इज्जत और स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है। जब पति की बेवफाही से वो टूट जाती है, तो वो चुप रहने के बजाय उसे थप्पड़ मार कर छोड़ देती है, जो 1965 की हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा कदम माना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म का हीरो भी एक बेहद महत्वपूर्ण डायलॉग बोलता है। कहते हैं, अगर तुम अपने आप को तरसने देती हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम एक औरत हो, गलत है रोजी, बिल्कुल गलत। ये डायलॉग और ये सोच उस वक्त के समाज और सिनेमा दोनों के लिए एक नया मोड़ थी। गाइड फिल्म ने बॉलीवुड में महिलाओं की इमेज को बदलने की शुरुआत की, और इसीलिए ये फिल्म अपने वक्त से काफी आगे मानी जाती है। तो चलिए, बात हो रही है इस फिल्म की, तो सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत, गाता रहे मेरा दिल, किशोर कुमार की आवाज में।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनवाते हैं 60, 70 और 80 के कुछ खूबसूरत नगमों को। और दोस्तों, 60s के हिंदी सिनेमा की बात हो और आराधना का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। 1969 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना को सिनेमा के आसमान पर एक नया मुकाम देने वाली फिल्म बनी। हालांकि आराधना का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड फिल्म टू इच इज ऑन से प्रेरित मानी जाती है, लेकिन उस दौर के भारतीय दर्शकों के लिए ऐसा विषय बिल्कुल नया था। एक जवान अविवाहित माँ के अकेली जिंदगी के संघर्ष से गुजरना, ये सोच और एक कहानी तब के समाज के लिए आसान नहीं थी। शर्मिला टैगोर का किरदार भले ही हॉलीवुड की मजबूत और बिजनेस माइंडेड हीरोइन जैसा ना हो, फिर भी उनका किरदार एक नया संदेश लेकर आया। ये फिल्म माँ के बलिदान, सामाजिक दबाव और एक औरत के जज्बे को बड़े ही संजीदगी से पेश करती है। इसीलिए आराधना सिर्फ एक रोमांटिक या म्यूजिकल हिट नहीं रही, बल्कि अपने समय से आगे की सोच रखने वाली फिल्म के रूप में मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं आराधना का ये गीत, रूप तेरा मस्ताना, किशोर कुमार की मधुर आवाज में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ इन पुराने लेकिन यादगार लम्हों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

जो हिंदुस्तान एन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, जहां हम आपको सुनवाएंगे बैक टू बैक कुछ बॉलीवुड पॉपुलर ट्रैक्स। और सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे शिबाई फिल्म से दरखास्त, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के युगल आवाजों में।

0: കേരളം, മാഹെ, സബ് ഹിമാലയൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, സിക്കിം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കറൈക്കാൽ, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ അൻടിൽ ടുമോറോ. ദ മെറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ലൈറ്റനിംഗ് ഓവർ ബിഹാർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഇന്റീരിയർ കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ്, ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ കർണാടക ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ്. Most districts of Rajasthan are currently in the grip of intense heat and heat wave conditions. The Meteorological Center has issued an orange alert for heat wave conditions in two districts of the state today, while a yellow alert has been issued for 14 districts. Our correspondent reports that the scorching sun has affected normal life.
1: Severe heat and hot winds are troubling people across the state. Along with the days, the nights are also extremely warm. In most districts, day temperatures are being recorded between 42 and 46 degrees Celsius, while night temperatures are running from 26 to 31 degrees Celsius. The Met Center has predicted that the heat wave conditions are likely to continue for next 3 days. Meanwhile, Health Minister Gajendra Singh Khimsar has directed to ensure all necessary arrangements in hospitals for heat wave management. Instructions have been issued to reserve separate beds for heat stroke patients, ensure the availability of essential medicines, and arrange shared and drinking water facilities in hospitals. Jitendra Dwivedi, Akashvani News, Jaipur.
0: Punjab and Haryana are reeling under severe heat wave conditions with maximum temperatures ranging between 40 and 47 degrees Celsius across both states. The Meteorological Department has already issued an orange alert for the region. A report.
2: Director of the Chandigarh-based Met Department, Surinder Pal, told Akashvani that the weather will remain dry and temperatures would increase in the coming 3-4 days. Western districts in both the states would experience more heat wave conditions. In Punjab, these districts will be Amritsar, Firozpur, Tarn Taran, Mansa, Sangrur, Bhatinda and Muktsar. And in Haryana, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Gurugram and Faridabad would feel the maximum heat. In the last 24 hours, Faridkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius and Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar.
0: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narinder, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict, and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO, and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy, and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after U.S. President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं प्रेस वक्तव्य समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है रोम से सुपर्णा भाटिया
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
5: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
6: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
7: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
3: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचारों को। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों सौभाग्य इस भाग में लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s, जहां दोस्तों जब भी हम एवरग्रीन सॉन्ग्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 90s के सॉन्ग्स याद आते हैं। वो गाने जो न सिर्फ सुपरहिट थे बल्कि हमारे दिल के इतने करीब हो गए हैं कि हर दौर में नए लगते हैं। तो चलिए हम आपको ले जाएंगे उन्हीं यादगार नगमों की दुनिया में और 90s का सबसे पहला गीत सुना रहे हैं दिल है तुम्हारा फिल्म का मस्ताना मौसम है अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, कभी कभी प्यार सिर्फ मुस्कुराहट नहीं देता, कुछ यादें, कुछ दर्द और एक ऐसा आवाज दे जाता है जो सीधा दिल को छू ले। 90s का वो दौर, कैसेट रिवाइंड करने का जमाना और एक गाना जिसने जुदाई को एक एहसास बना दिया। आज के इस 90s के महफिल में पेश है अब उदित नारायण, कुमार सानू और सपना अवस्थी की आवाज में राजा हिंदुस्तानी से परदेसी।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिट ऑफ 90s में। दोस्तों अगला गीत आप सुन पाएंगे परदेश फिल्म का, ये दिल दीवाना। इस फिल्म में शाहरुख खान, महिमा चौधरी और अपूर्वा अग्निहोत्री ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता। वही इस गाने को अपनी पावरफुल आवाज दी कुमार सानू ने। ये दिल दीवाना एक ऐसा गाना है जिसमें प्यार की तड़प भी है, जुनून भी, और दिल की वो बेचैनी भी जो किसी खास के लिए महसूस होती है। नदीम श्रवण का सोलफुल म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल आज भी सीधा दिल को छू जाते हैं। तो चलिए महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत को, ये दिल दीवाना।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हिट अप 90s कार्यक्रम का ये सफर यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्मिकमन श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होते हैं दिल से दिल के बाद लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी और मसालेदार खबरें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की बॉलीवुड अपडेट। और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म मैं वापस आऊंगा की। वेदांग रैना और शर्बर स्टारर ये इमोशनल ड्रामा अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रेलर में इमोशंस, फैमिली बॉन्डिंग और इंटेंस ड्रामा का परफेक्ट मिक्स देखने को मिला, जिस वजह से ऑडियंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। फैंस स्पेशली वेदांग और शर्बरी की फ्रेश केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि फिल्म थिएटर्स में कितना कमाल दिखा पाती है। और अब बात करते हैं ग्लैमर और फैशन की दुनिया की। कान 2026 में इस बार बॉलीवुड सेलेब्स का जलवा छाया हुआ है। फ्रेंच रिबराई के रेड कार्पेट पर मौनी रॉय, जैकलिन फर्नांडेज और सोनम चावड़ा ने अपने स्टनिंग लुक से सबका अटेंशन ग्रैब किया। सोशल मीडिया पर उनकी आउटफिट्स और स्टाइल स्टेटमेंट्स ट्रेंड कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी कान सिर्फ सिनेमा नहीं, फैशन लवर्स के लिए भी एक बड़ा सेलिब्रेशन बन गया है। इसी बीच बॉलीवुड के एस फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी भी एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हेडलाइंस में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो लेकर आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस सीरीज की कि उनके बेटे वीर हिरानी एक्टिंग डेब्यू करने वाले हैं इस सीरीज के साथ। फैंस के लिए ये प्रोजेक्ट इसीलिए भी एक्साइटिंग है क्योंकि राजकुमार हिरानी का नाम ही क्वालिटी सिनेमा की गारंटी माना जाता है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है।

और साथ ही दोस्तों बॉक्स ऑफिस से एक मिक्स्ड अपडेट सामने आ रही है। संजय दत्त की रिसेंट फिल्म आखिरी सवाल को ओपनिंग के बाद कलेक्शन में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक लवर्स के लिए एक गुड न्यूज भी है। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टारर कॉकटेल 2 के अपकमिंग सॉन्ग्स और म्यूजिक एल्बम को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट काफी हाई है। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी स्पेकुलेशन शुरू हो चुकी है कि फिल्म के ट्रैक्स पार्टी चार्टबस्टर बन सकते हैं।

और अब दोस्तों एक ऐसी खबर जो माधुरी दीक्षित के फैंस को और भी इंस्पायर कर देगी। एक थ्रोबैक रिवलेशन में पता चला कि आइकॉनिक सॉन्ग डोला रे डोला के रिहर्सल के दौरान माधुरी दीक्षित 4 महीने प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, फीवर और एक्सट्रीम पेटिक के बावजूद उन्होंने लगातार 13 घंटे तक प्रैक्टिस की ताकि परफॉर्मेंस परफेक्ट बन सके। इसी डेडिकेशन और हार्डवर्क ने माधुरी

0: सुनते हैं कॉकटेल टू फिल्म से माशूका, जिसे गाया है महमूद राघव चैतन्य और रुआ कैर ने।
1: प्यार में बिलीव करती हूँ, बस प्यार में बनने में बिलीव नहीं करती। जो जब तक है तब तक है।

दोस्तों इसी के साथ ही आज के बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में यानी 3:40 पर आप सुन पाए

0: सुनाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि मेले मनी चार तारीख बुधवार इरुमा केम वंचो चाय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी कमे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोमचू सिंगवान के एक्टर सुरेश गोपी मनी ईटानगर अंके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होनुटो उइले हाइया इंस्टीट्यूट मा सतमोद मामोक के अबुकुचित पोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हामा वन लेको अंग ले वंग के यूनियन मिनिस्टर हले मुई कमा इपोंगे मोकले ओ के प्रोजेक्ट बु बामा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अंके ऑफिशियल्स बु बोमा मेसा केंगे कंस्ट्रक्शन हपु होटोंग फाइ ले साइटिक कटिक लेचु वन ले यूनियन मिनिस्टर हले एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना डिप्टी कमिश्नर लोकसंग सेरिंग इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर गियुम ताली बोमा मामा अचोंगा बोंग थाम फाइले तम लिंगुइले गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी परनाइक ए अरुणाचल प्रदेश मा एमएसएमई मखांग ए सोशो इकोनॉमिक फन नामई आंग स्टेट मा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई मोटली तो चोंगलो मखैला काले हालेमानी न्यू दिल्ली तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फाइले आसाम ले मोकले ओके ईशान इंटरनेशनल एमडी बोमचु सीईओ संतनु श्रीवास्तव भाई अरोकमा गवर्नर ए अरुणाचल प्रदेश मा एंटरप्रेन्योरशिप हिया लोकल एंटरप्राइजेस फन अमाइ अंक हान पकमा लाली तोनली ट्राइबल रिंग जाउ ऑर्गेनिक हाटोक मान राय फाउसुई टूरिज्म सत मोट बोमा कल्चरल हेरिटेज ले टाटाली तोमोक से थेचु आक्याकले तैपु लुवन कोले चे हले एमएसएमई मखां ए खाफक खसे मिनुशिको रिंगपा जाउपा रंगमोट मान राय बोमा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थाम हान पकमाले मोट सचु रेनु मजाउ अलाय चौकई लवन के बोमा इंफ्रास्ट्रक्चर होलीपन मई मुंजान मखांग फोंग स्किल डेवलपमेंट था हंग नुई अलिंग लोक लेको के बोमा डिजिटल होलीपन ले यांग मई दौबा एमएसएमई मखांग ए तिंखो अखा पंचु अमाय यंतोले आत्मनिर्भर अरुणाचल हेया विकसित भारत मोटचू हयेलवनले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पावन कुमार सेन ए मनी निर्वाचन भवन मा पॉलिटिकल पार्टीज खाटो के थम फै स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग ला के मा जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लीकेन कोयू बोमा डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सानिया कायम मिजे निचु हकले हया मीटिंग इलेक्टोरल रोल्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर सतमोट हानपकमा अचोनाथा आंग ले मरंग सेप्टेम्बर बनरोक तो आंग दौके हचाखतो चाकतो यानतो बोमचू इलेक्टोरल रोल्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बामा इबाय गाय दौके फेस थ्री सतमोट बामाचू आरों आंग लेंगोट के चांगले तावंग तुके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मनी लुंगला सर्कल खामा सायो अंके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवश्य विद्यालय मा सेवा अपके द्वार 2.02 जाले सायो पोइतो दुगुंबा कुंबा बोमा हया हरु होनाम तोके ले तिंखो आखा खनक नुमोट मोकले कोले हले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सायो हकले यंग यंग खनक नु सत मोट खखा खाके बु बोमा अवेयरनेस प्रोग्राम्स ले मकोकोले हाखामा आधार मोड जन सुनवाई गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बुबामा अपोनो लेको काकलक तो अमोल हुमे लेको वेटेनरी मोड एबीपीएमएवाई ही या ईश्रम खामा खनक नुमन अपत लेको ले मकोकोले हायकेमा हले तिंखो खनक नु मिहुआ हॉरम पुली मोड जो जाल लेकोले पासीघाट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हनुमा नॉर्थ ईस्ट मा ऑयल पाम कैथम अंगे मोटलम आखाउ अंगलके बामा नेशनल वर्कशॉप नि रामजो अतुजाना हले नॉर्थ ईस्ट रीजन मा ऑयल पाम कैथम अंग के सत मोटो रेनु मोके बोमा हले गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत मिशन होलम तोल मोके खांग ए सत मंगा रेनु मजो रिंगले अलाइ अंगले तुंगले हाया वर्कशॉप सीएचएफ Society for Promotion of Oil Palm Research and Development ICAR IIOPR Central Government Khangke Agriculture and Farmers

0: welfare department antole oil pump ringke companies thamle asamla le angotle west coming deputy commissioner dr dilip kumar e mani bomdila to district town planning committee meeting angotle hayama town planner tham e tampai hayama town planner e district ma urban master plan temle ringse le tungtai poilke powerpoint representations alai leven ko le haya khama plan development satmot boma district ma urban honui phan amai ang temle mok ko le mai he le ngai leven le hai ma haya committee e master plan satmot boma bomdila township khama horui honam honui bu phan amai ang satmot ba ma le chuarong le ha boma alo to thamaku leke state level hangpan dada memorial trophy 2026 hanpakma laka nausam boma shiko nausam le football antole volleyball male matham matham honui to apan le arapa bau lengona ani ka khama laka nausam football itpp ground 1 boma darka ground male apan angka boma shiko nausam football matches ground 3 pakam boma ground 4 appbn honui male arapai haboma volleyball laka nausam antole shiko nausam le army ground ma court number 1 boma court number 2 male arapa bawai anyi ka ka ho ivai eja akashwani itanagar ka ho phai machai pahai hovange wang cup wang suring ma pahai
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा DRM 666 किलो हर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे मुझसे शादी करोगे फिल्म से जीने के है चार दिन, जिसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना खट्टा मीठा फिल्म से सजदे की है लाखों के और सुनिधि चौहान की आवाज में। इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे ईद मिशमी श्रोताओं का

इसी के साथ ही दोस्तों हम शुरू कर चुके हैं हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम, और पहला गीत आप सुन पा रहे हैं फिजा फिल्म से महबूब मेरी, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और करसन सरघाटिया ने।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, साथ ही बता दूं, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में, और तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेंगे आपकी अपनी RJ नीलम। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।
1: इरो आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा दुबा सरोम सोम मेजिलिंग रंखु तारीख अरौरंगजा बलैबजी खु मिनट थोड़ा मसो तंसा प्रोग्राम तफंगाई रुगनारो कोहांग वासिम केंग आचोंग गवर्नमेंट वांग यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अरौ वमंगरोग एक्टर सुरेश गोपी मनई ईटानगर वांग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI पर रायकतंगो रोक परजु इंस्टीट्यूट नंग इंफ्रास्ट्रक्चर कतंग बांग अरौ कम पेंडिंग कनुंग पर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री म रफन म अचोंग गवर्नमेंट वांग मिनिस्टर ऑफ

सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर नहीं फार्मिंग वेलफेयर डेवलपमेंट पर वाइल पाल्म प्रोसेसिंग कंपनी रो करुम रो पासीघाट नांग पर वर्कशॉप तैयार तुम रोक दो आरो लगता को स्टेट लेवल हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी मेमोरियल ट्रॉफी तो रंग जैसे थला बस नहीं कैटेगरी नंग फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल इवेंट पर अहम तैयार रंग रोक दो आलो नंग पोंग पोंग वेन्यू ताम नंग पर टूर्नामेंट पर तैयार रंग रोक दो पर जो मचोसा आईटीबीपी ग्राउंड वन नहीं दारका ग्राउंड नंग थला फुटबॉल मैच पर तो ची पर थला ने जिसे वस नहीं कैटेगरी नंग वॉलीबॉल मैच पर आर्मी ग्राउंड वन कोर्ट वन नहीं कोर्ट नंबर टू नंग तो ची मो रोक दो रुंगरांग इटा नंग थुम दो इरो आकाशवाणी इटानगर डिब्रूगढ़ मचोनम र सौ साई प्रोग्राम नंग कचाए केंगलिंग केंगलंग साई ताचन।

0: अभी आपने सुना तांगसा श्रोताओं का समाचार। तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज तथा 666 किलो हर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। श्रोता मित्र, आप सभी को आपके अपने रेडियो साथी नीलम का नमस्कार और आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता मित्रों, इसे तीसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करने से पहले आरजे दुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिचय के लिए और इस स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए अब इस प्रसारण सभा का आगाज करते हुए पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: Good evening, Itanagar.

श्रोता मित्रों, भोजन के जिस अंश को हम बड़ी आसानी से थाली में छोड़ देते हैं या कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उससे केवल अनाज की ही बर्बादी नहीं होती, बल्कि उसमें विद्यमान ऊर्जा, कार्बन, जल और पोषक तत्व की भी बर्बादी होती है। अवशिष्ट भोजन से, जी हाँ दोस्तों, छोड़े गए भोजन से हर साल 4.5 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। श्रोता मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये भोजन छोड़ने की आदत को हमें जल्द से जल्द सुधारने की भी जरूरत है। तो खाने की बर्बादी को रोकने के लिए किसी संस्था, सरकार का इंतजार ना करें, खुद से इसकी पहल करें। जी हाँ श्रोता मित्रों, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं ये गीत।

बात कर रहे हैं उन तरीकों की जिससे बचा सकते हैं खाने की बर्बादी। एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर में हम कई ऐसी चीजें उठा लाते हैं जिसका कई बार इस्तेमाल किए बिना ही फेंक देते हैं, जिसके चलते बहुत सारी खाने पीने की चीजें बर्बाद होती हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते भर का फूड मेन्यू तैयार कर सकते हैं। इसके अनुसार शॉपिंग लिस्ट तैयार करें, साथ ही उनकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। पैकेट पर यूज बाय के सामने एक तारीख लिखी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है कि आपको इस प्रोडक्ट को उस तारीख तक यूज कर लेना है। वैसे तो ज्यादातर फूड पैकेट्स पर ये चीज लिखी होती है, लेकिन दूध, दही, ब्रेड, मीट जैसी चीजें बहुत जल्द एक्सपायर हो जाती हैं। ऐसे में खरीदते वक्त इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए और इस्तेमाल के दौरान भी, जो खाने की बर्बादी रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, खाना बनाने से पहले एक बार फ्रिज में मौजूद चीजें चेक कर ले, जिससे जल्द एक्सपायर होने वाली चीजों का पहले इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बची हुई दाल और सब्जी का इस्तेमाल आप पराठे पूरी में कर सकते हैं। ज्यादा पके हुए फलों से स्मूदी या फिर जूस तैयार किया जा सकता है। और इसके साथ ही एक बार में ही खाने की प्लेट में बहुत ज्यादा खाना लेना अवॉइड करें, इससे फूड बर्बाद होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। बेहतर होगा कि थोड़ा खाना ले और खत्म होने के बाद फिर से जाकर ले। शादी पार्टीज में एक बार में कई चीजें सर्व करने के चलते ही बहुत ज्यादा, जी हाँ, खाने की बर्बादी होती है। तो चले श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे रेड टू फिल्म से। जी हाँ, ये गीत जैस्मिन सैंडलास, सचेत टंडन और अन्य साथियों की आवाजों में। श्रोता मित्रों, हाउस पार्टी, एनिवर्सरी या बर्थडे सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा खाना बच गया हो तो इसे फेंकने की जगह पड़ोसियों से या दोस्तों से पूछकर उन्हें दे दें। अगर ऐसा करने में झिझक हो रही हो तो गरीबों में इस खाने को बांटने का भी ऑप्शन है। वैसे अब कई तरह के फूड बैंक्स भी शुरू हो चुकी हैं, जिसका काम ही होता है कि घर से खाना इकट्ठा करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना। जी हाँ श्रोता मित्र, इन सारे उपाय से हम खाना की बर्बादी को काफी हद तक रोक सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये आखिरी गीत जीरो फिल्म से भूमि त्रिवेदी राजा कुमारी की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद यानी ठीक 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल

0: ULPGMV-3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 9वीं राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2026 के लीग चरण के मुकाबले आज भी जारी रहे, जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना केंद्र के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। और IPL क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेट्रोला के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। ये बातचीत भारत और इटली के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है, जिसमें आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संबंधों को विस्तार देने पर विशेष बल दिया गया है। श्री मोदी ने भारत और यूरोप के बीच संबंधों और मजबूत बनाने में इटली के सहयोग की भी सराहना की है। उन्होंने उभरती टेक्नोलॉजी, विनिर्माण तथा सतत विकास के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अपनी कूटनीति और आर्थिक संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देश ने आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल V3 के अंतिम विकास परीक्षण का सफलतापूर्वक पूर्ण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGMV-3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सहउत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड के इसी प्रभावशालिता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश गोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया, जिसका उद्देश्य संस्थान की मौजूदा आधारभूत संरचना की कमियों को लंबित कार्यों का आकलन करना रहा, जिनके बाद में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा मेसर्स केनगे कंस्ट्रक्शन के साथ चल रही परियोजनाओं की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संस्थान की सभी इमारतों और सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आधारभूत संरचना के समय पर पूर्ण होने में आ रही प्रगति और चुनौतियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना, उपायुक्त लोबसांग शेरिंग, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक गजुमताली तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि MSME अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। नई दिल्ली में भारत में MSME सशक्तिकरण हेतु राज्य और केंद्र सरकारों के साथ रणनीतिक साझेदारी का नेतृत्व करने वाले ईशान इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनु श्रीवास्तव के साथ बातचीत में राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय हस्तशिल्प, जैविक खेती की संभावनाओं वन उत्पादों, पर्यटन अवसरों और वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के कारण उद्यमिता और स्थानीय उद्योग विकास के लिए अपार संभावना रखता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सतत आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि बेहतर आधारभूत संरचना, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, बाजार संपर्क और डिजिटल पहुंच के माध्यम से एमएसएमई समावेशी विकास को गति देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा आत्मनिर्भर अरुणाचल और विकसित भारत के लक्ष्य में भी योगदान दे सकते हैं। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती के तीव्र विस्तार के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण तैयार करना तथा केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत वनस्पति तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इस कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ICAR, IIOPR, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा ऑयल पाम प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के खेली जा रही 9वीं राज्य स्तरीय हांगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2026 की लीग चरण के मुकाबले में आज जारी खेलों में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में कड़ा मुकाबला और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। भाग लेने वाले जिलों में विभिन्न स्थलों से आयोजित प्रतिभागियों में उत्कृष्ट टीम भावना, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। आज फुटबॉल बॉयज वर्ग में मुकाबले में ITPP ग्राउंड 1 और दारका ग्राउंड में खेले जा रहे हैं, जबकि फुटबॉल गर्ल्स वर्ग में मैच ग्राउंड 3 पाकाम और ग्राउंड 4 APPBN में जारी रहेंगे। वहीं लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों की वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं क्रमशः आर्मी ग्राउंड के कोर्ट नंबर 1 और कोर्ट नंबर 2 में आयोजित की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत आधारित क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा भी मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संविदा सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक पर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO के मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGMV3 का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रसिद्ध अभिनेता सुरेश कोपी ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII के ईटानगर परिसर का दौरा किया। पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के तीव्र विकास के लिए रणनीतिक समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। President Draupadi Murmu today said that to achieve the goal of a Viksit Bharat and take society to the pinnacle of progress, officers will often have to move forward by striving against

0: Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात
3: बस आपके नाम
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़

श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी टनगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ है आपके अपनी रेडियो साथी नीलम। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:06 हो रहे हैं। तो श्रोता मित्र, इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

अभी आपने सुना कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये पहला गीत सिम्बा फिल्म से अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में। श्रोता मित्रों, आज हम आपको गीतों के साथ सुनवा रहे हैं एक छोटी सी कहानी। तो कहानी इस प्रकार है। जी हाँ, एक दूध वाले के पास एक गाय थी जिसका दूध निकालकर वो बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा उसके पास कोई और पैसा कमाने का साधन नहीं था। एक दिन जब वो बाजार दूध बेचने गया था, उस दिन उसकी गाय उसके घर के सामने बने तालाब में गिर गई। तालाब से बाहर ना निकल पाने के कारण तालाब में ही वो मर गई। जब शाम को दूध वाला वापस आया तो देखा उसकी गाय मर चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा अब आगे उसका जीवन कैसे चलेगा। उस रात उसको नींद नहीं आई। अगली सुबह वो उसी तालाब के किनारे काफी देर से चिंतित बैठा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमारे पास और रास्ते हो सकते हैं। उसने उसी तालाब की मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इससे उसको दूध से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। श्रोता मित्रों, ये थी छोटी सी कहानी। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक रास्ता बंद होने पर हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। जी हाँ, नहीं बैठना चाहिए, हमें दूसरे रास्ते की तलाश जरूर करनी चाहिए। श्रोता मित्रों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही हम अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोतमित्र आप सुन रहे थे दो पत्ती फिल्म से ये बेहतरीन गीत। जी हाँ, परंपरा टंडन की आवाज में। जी हाँ श्रोतमित्र, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ट्रैप का। आपको बता दें कि फिलहाल हम ले रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVT.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: रॉक फिल्म से आप सुन रहे थे ये बेहद ही खूबसूरत गीत के की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दें कि इस वक्त समय है, जी हाँ, हमारे घड़ी में बज रहे हैं शाम के 5:30। और हद से इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप कहीं जाएगा मत, क्योंकि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम शाम की महफिल।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, AVS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल, जी हाँ कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम का जी हाँ पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बेहद ही प्यारा गीत, दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत गीत लीजिए प्रस्तुत है फिल्म दिल है के मानता नहीं से, जिसे आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने, और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने, जिसे लिखा है फैज अनवर ने। तो लीजिए प्रस्तुत है जी हाँ कार्यक्रम शाम की महफिल का ये पहला गीत।

जी हाँ श्रोता मित्र, इन खूबसूरत गीतों का आप आनंद ले रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। जी हाँ, कार्यक्रम शाम की महफिल के तहत आपको बता दें कि इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में दस्तक फिल्म से। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आया आया आजा। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। जी हाँ, लव स्टोरी फिल्म से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने। जी हाँ दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है कार्यक्रम में सुनवाए गए गीतों का आप सभी ने आनंद लिए होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहें अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म के बेहतरीन नगमे। तो लीजिए प्रस्तुत है आराधना फिल्म का ये गीत।
1: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है
2: क्या?
1: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
2: है।
1: गर्मियों के निहार है?
2: हाँ, है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। जी हाँ, आपको बता दें कि आप आनंद ले रहे हैं, जी हाँ, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम का, और जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म के बेहतरीन सदाबहार नगमे। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को आप सुन रहे थे चंदा है तू लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, 1969 में आई ये सदाबहार आराधना फिल्म, जी हाँ, फिल्म का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। फिल्म का मधुर संगीत दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन के बर्मन ने तैयार किया था और उनके बेटे आरडी बर्मन ने सहायक संगीतकार के रूप में काम किया था। जी हाँ, इसके सभी सदाबहार

0: बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे। श्रोता मित्र, आगे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम में इस फिल्म के और भी बेहतरीन गाने। इससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Design advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम।
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे आराधना फिल्म के सदाबहार गीतों का। इसी गीत का आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। श्रोता मित्र, इसके साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज जहां फिल्मों में टाइपकास्ट किए जाने को लेकर स्टार्स का रोना निकल जाता है और वो अच्छी से अच्छी फिल्मों को छोड़ देते हैं, वहीं 50 और 60 के दशक में एक ऐसा एक्टर हुआ जिसने टाइपकास्ट बॉलीवुड मोस्ट टाइपकास्ट एक्टर्स होकर ही अपनी तकदीर बदली। जी हाँ, इस एक्टर का नाम था जॉनी वॉकर। जी हाँ दोस्तों, जॉनी वॉकर जिन्होंने असल जिंदगी में कभी शराब की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिल्मी पर्दे पर एक शराबी की ऐसी एक्टिंग करते थे जिसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको हिंदी सिनेमा के गोल्डन हीरो जॉनी वॉकर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

आवाजों में मिस्टर एंड मिसेस बचपन यानी कि 55 फिल्म से। श्रोता मित्र, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस बात को जॉनी वॉकर ने सच साबित करके दिखाया। जॉनी वॉकर की कॉमेडी को लोग आज भले ही अजीब कहें, लेकिन 50, 60 और 70 के दशक में उनकी इस कॉमेडी का हर कोई कद्रदान था। जी हाँ, उनका जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका नाम बदरुद्दीन काजी था। परिवार के लोग एक मील में काम करते थे। घर परिवार के किसी भी सदस्य का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब पिता की नौकरी चली गई तो परिवार को गुजारा करने में परेशानी होने लगी। पिता की नौकरी चली गई तो पूरा परिवार काम की तलाश में मुंबई आ गया। जॉनी वॉकर परिवार में बड़े थे, इसलिए उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बांटने का फैसला किया। जॉनी वॉकर ने आइसक्रीम से लेकर स्टेशनरी का सामान, यहां तक कि फल और सब्जियां तक बेची। जॉनी वॉकर सिर्फ छठी क्लास तक पढ़े थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़कर कुछ नौकरी कर सके, इसलिए जॉनी वॉकर ने अपने और परिवार के गुजारे के लिए हर छोटा बड़ा काम किया। उन्होंने बस कंडक्टर की भी नौकरी की। तो चलिए श्रोता मित्र, इसी के साथ हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत।

जोनी वॉकर को फिल्मों में पहला ब्रेक जो मिला उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जोनी वॉकर बड़े ही कॉमिक अंदाज में बस स्टॉप का नाम लेते थे। एक बार उनकी बस में एक्टर बलराज साहनी भी बैठे थे। वो कहीं जा रहे थे तभी उन्होंने जोनी वॉकर और उनकी कॉमिक स्टाइल को देखा। बलराज साहनी उन पर फिदा हो गए और जोनी वॉकर को एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त से मिलवाया। ये भी कहा जाता है कि बलराज साहनी ने जोनी वॉकर को 1951 में आई फिल्म हलचल के सेट पर बिना पिए एक शराबी की एक्टिंग करते हुए देखा था। रोल छोटा था लेकिन जोनी वॉकर ने बलराज साहनी को प्रभावित किया। उसी साल गुरुदत्त फिल्म बाजी में एक कॉमिक एक्टर की तलाश

कर रहे थे, तब बलराज साहनी ने उनसे जॉनी वॉकर को मिलवाया। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक प्लान की गई। गुरुदत्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में मौजूद थे। बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर से कहा कि तुम एक शराबी की एक्टिंग करते हुए उनके ऑफिस में जाना। जॉनी वॉकर ने ऐसा ही किया। बताया जाता है कि जॉनी वॉकर ने ऐसा किया था। गुरुदत्त को लगा कि उनके ऑफिस में ऐसे कैसे कोई शराबी आ गया। गुरुदत्त ने आपा खो दिया। वो जॉनी वॉकर को बाहर निकालने ही वाले थे, तभी बलराज साहनी ने उन्हें रोका और बताया कि वो सिर्फ एक्टिंग थी। गुरुदत्त जॉनी वॉकर से इंप्रेस्ड हुए और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम आज के कलाकार। और कार्यक्रम के तहत आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर की। जी हाँ, आप सुन रहे थे, जी हाँ, इससे पहले गीत बहारे फिर भी आएंगी फिल्म से, जी हाँ, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि जॉनी वॉकर हमारे देश के एकमात्र एक्टर हैं जिनके नाम से फिल्म बनाई गई। वो एकमात्र एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए सेक्रेटरी या मैनेजर रखा था। यही नहीं, बताया जाता है कि जॉनी वॉकर ने ही फिल्म इंडस्ट्री में संडे को काम ना करने का ट्रेंड भी शुरू किया था। 50 के दशक तक जॉनी वॉकर का खूब जलवा रहा, लेकिन 60 तक आते आते कॉमेडी का अंदाज बदलने लगा। इसका असर जॉनी वॉकर के कॉमिक किरदारों पर भी पड़ने लगा। बताया जाता है कि हर फिल्म में जॉनी वॉकर के लगभग एक जैसे ही किरदार लिखे जाने लगे। जैसे तैसे जॉनी वॉकर कॉमेडी के बदलते दौर में टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुदत्त की अचानक मौत ने उन्हें गहरा सदमा दिया। लेकिन जैसे तैसे वे खुद को इंडस्ट्री में खड़े रखा उन्होंने।

मौके के हिसाब से उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाने शुरू किए। फिल्म गोपी से लेकर आनंद तक में जॉनी वॉकर के किरदारों को काफी पसंद किया गया। इसके बाद जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म कमल हसन स्टारर चाची 420 थी। इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने उस मेकअप आर्टिस्ट के किरदार निभाया जो कमल हसन को चाची 420 बनाता है।

आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, जॉनी वॉकर बिना शराब पिए एक शराबी की

इस तरह एक्टिंग करते थे कि हर कोई हैरान रह जाता था। फिल्म मधुमती में जॉनी वॉकर ने चरणदास नाम का एक ऐसा किरदार निभाया था जो पूरी फिल्म के दौरान नशे में ही रहता है। जरा सोचिए, जॉनी वॉकर ने वो पूरी फिल्म एक शराबी के अंदाज में शूट की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर ने, जी हाँ, 2003 में 29 जुलाई को आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रोता मित्रों, वे भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा। तो इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

हसीना मान जाए ये फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में ये गीत। जी हाँ, इस गीत के साथ ही हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहें ये गीत।

श्रोता मित्र, आपको बता दें कि किसी कारणवश आज आप निश्चित श्रोताओं का समाचार नहीं सुन पाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो रहा है, जी हाँ, शाम के 7:06 हो रहे हैं। और जी हाँ श्रोता मित्रों, हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

जी हाँ श्रोता मित्र, किसी से प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। जी हाँ, इसे गीत का आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाजों में। जी हाँ, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत सनम रे फिल्म से।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का। जी हाँ, इस गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में, ये दिलासकाना फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सिलसिला

0: आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम ले रहे हैं फिलहाल एक अंतराल।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVT.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak baat pahunchi. मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz, दिल से दिल की बात।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: I love my Eco because it's got more power.
2: And it also comes with all new safety features.
4: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
3: We love our Eco,
2: cause it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
5: जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पर। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। श्रोता मित्र, श्री कृष्ण के प्रेम और समर्पण को दर्शाते फिल्म कृष्ण अवतारम पार्ट वन के गाने अब आगे आप सुन पाएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म इसी महीने यानी कि 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म के गाने।

कृष्ण अवतारम पार्ट वन फिल्म के से गीत को आप सुन रहे थे सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस फिल्म के संगीत प्रसाद एस द्वारा तैयार किया गया है और इसके गीत इरशाद कामिल ने लिखे हैं और इसमें कुल 9 गाने हैं जो भक्ति, रास और प्रेम पर आधारित हैं। तो चलिए, इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का अगला गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म गीत पर आधारित कार्यक्रम। अब आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के ठीक 8 बज रहे हैं और आगे आप सुन पाएंगे अरुणाचल प्रदेश के विविधता को दर्शाता हमारा कार्यक्रम अपना गीत।
1: नई आशा और अटूट विश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। मैं आपके रेडियो साथी गैर अतर आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। उम्मीद आप सभी की सलामती की, आशा कुछ और पल आपकी जिंदगी में खुशियां भरने की और विश्वास हर दम आपके साथ जुड़ने का। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कार्यक्रम अपना गीत लेकर आती हूँ ये जरूर सोचती हूँ कि आप अपने ही प्रदेश के गीतों को सुनकर कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करते होंगे तो कुछ आज के संगीत पर धुन मिलाते होंगे। और इसी आशा के साथ लीजिए पेश कार्यक्रम का पहला गीत, मेडिको मेंजो की आवाज में ईदू गीत।

सोकेप क्री द्वारा गाए गीत आप सुन रहे थे मिजू मिश्मी भाषा में। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो आप तक पहुंच रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज पर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अगला गीत निशी भाषा में, और आवाजें हैं तोको तेनी और यामी लाजी की।

दोस्त तो हमारी सोच, हमारी चाहत और कल्पना की सीमा ही क्या होती है। सोचो अगर हम एक तितली होती तो क्या करते। बेशक खिले हुए फूलों की क्यारियों में जाते, उनके रंगों के साथ खेलते, रस का आनंद लेते। और इनसे भी मजेदार बात यह है कि ये जो चाहत है ना, अक्सर कई लोगों की एक सी होती है। जी हाँ, चाहतों की पूरी लिस्ट के साथ पेश है अगला गीत गालो भाषा में झुमकेन रालिन की आवाज में।

0: नुक्ते गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यही पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज। नमस्कार।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना गीत। आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, आगे आप सुन पाएंगे यूथ प्रोग्राम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVT.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: जी हाँ श्रोता मित्र, अब वक्त हो चला है यूथ प्रोग्राम का। जी हाँ, विषय है 90 इयर्स ऑफ रेडियो, ए जर्नी ऑफ वॉइसेस, स्टोरीज एंड कनेक्शन। कार्यक्रम की संचालिका है फ्लोरेंस शर्मा।
3: यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युवाओं का प्रेरणादायक कार्यक्रम युवावाणी। मैं हूं आपकी साथी फ्लोरेंस शर्मा और आप सभी युवा श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो की कहानी सिर्फ एक तकनीक की कहानी नहीं है, बल्कि ये आवाजों, संघर्षों और समय के साथ बदलाव की एक खूबसूरत यात्रा है। रेडियो का जन्म 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ, जब वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि बिना तारों के भी आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सकती है। यही खोज आगे चलकर रेडियो प्रसारण की नींव बनी। धीरे धीरे रेडियो ने दुनिया भर में अपनी जगह बनानी शुरू की। भारत में भी रेडियो का सफर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों और तकनीक के साथ प्रसारण शुरू हुआ, लेकिन फिर भी इसकी पहुंच लोगों के दिलों तक पहुंचती गई। समाचार, संगीत और शैक्षिक कार्यक्रमों में माध्यम से रेडियो ने समाज को जोड़ने का काम किया। आज हम जिस ऑल इंडिया रेडियो को जानते हैं, उसने भारत में रेडियो को एक मजबूत पहचान दी है। खासकर स्वतंत्रता के समय और उसके बाद रेडियो ने लोगों को जागरूक करने, जोड़ने और जानकारी पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ टेलीविजन, इंटरनेट एंड मोबाइल जैसे नए माध्यम आए और रेडियो के सामने कई चुनौतियां भी आई, लेकिन इसके बावजूद रेडियो ने खुद को बदलाव, आधुनिक तकनीक को अपनाया और आज भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। ये आज भी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक लोगों तक पहुंच रहा है। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और उसकी आवाज है। ये बिना किसी दिखावे के सीधे दिल तक पहुंचती है। ये वजह है कि इतने सालों बाद भी ये माध्यम आज भी जीवित है, प्रासंगिक है और लोगों के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और इसी सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आज रेडियो के 90 वर्षों का ये विशेष उत्सव मना रहे हैं। सभी श्रोताओं, आज का दिन वास्तव में बहुत विशेष है। आज हम रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा का प्रतीक है जिसने समय के साथ लोगों की आवाजों, भावनाओं और पीढ़ियों को आपस में जोड़ा है। रेडियो हमेशा से सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये एक साथी की तरह हमारे जीवन में मौजूद रहा है। सुबह की खबरों से लेकर रात के संगीत तक, विचार विमर्श से लेकर मनोरंजन तक, रेडियो ने हमेशा हमारे जीवन के हर पल को अपने साथ जोड़ा है। आज भले ही डिजिटल युग में अनेक नए माध्यम आ गए हो, लेकिन रेडियो की सादगी और उसकी सच्चाई आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। इस विशेष अवसर पर युववाणी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये युवाओं की आवाज को एक मंच देता है। ये ऐसा मंच है जहाँ नई पीढ़ी अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों को खुलकर साझा कर सकती है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि रेडियो केवल अतीत की चीज नहीं है, बल्कि ये आवाज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक है। आज के समय में संगीत एप्स, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में हम एक पल रुककर ये सोचते हैं कि क्या रेडियो आज भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है? क्या ये आज भी हमारे दिलों को वैसे ही छूता है जैसे पहले छूता था? इन्हीं सवालों के उत्तर जानने के लिए आज मैं अलग अलग लोगों से बातचीत करने जा रही हूँ, छात्रों, युवा, रचनाकारों और श्रोताओं से, जो अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करेंगे। उनके माध्यम से हम समझेंगे कि रेडियो आज की पीढ़ी के लिए क्या मायने रखता है। ये यात्रा केवल प्रश्न और उत्तर की नहीं है, बल्कि ये सुनने की यात्रा है, उन कहानियों को सुनने की, उन भावनाओं को समझने की और उस रेडियो को महसूस करने की जो आज भी चुपचाप हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के इस विशेष युवा वाणी कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं रेडियो के 90 वर्ष। एक ऐसा माध्यम जो आवाज से शुरू हुआ लेकिन हमेशा दिलों तक पहुंचा। एज वी सेलिब्रेट 90 ईयर्स ऑफ रेडियो, I would like to begin by asking Hage Anku, how do you see radio today in the digital era, and do you think it is still relevant in our lives?
4: Yeah, that's actually something I think about a lot, because we have kind of grown up in between both worlds, right? Like we have seen radio, but also the rise of the phone, streaming apps and everything. So I feel like radio today is not gone, but just quieter than before. It's still there. No, just not always noticed. Earlier, radio used to be the main thing. People didn't have too many options, so they would actually wait for their favorite programs, songs, or even any specific host. There was this sense of timing and excitement. Now, everything is on demand. You can play anything, anytime, and because of that, I think we have become a little impatient too. But even after all that, I wouldn't say radio has lost its relevance. In fact, in some way, it still does something that digital platforms don't. Like when you listen to music on your phone, it's very individual. You choose it, you control it, but radio feels more shared. You don't know who else is listening at the same time, but there's this quiet connection. It's like being part of something without even trying it. And also, radio has kind of authenticity. It's not always polished or

0: पढ़ रहे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे साथ इस सुंदर यात्रा में समय बिताया। रेडियो ने हमेशा लोगों को जोड़ा है, दूर बैठे हुए अनजान लोगों को भी एक ही आवाज से जोड़ने का काम किया है। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान को इंसान से जोड़ने वाली चीज हमेशा भावनाएं ही रहेगी। तो अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये एक एहसास है, ये वो आवाज है जो बिना देखे भी दिल तक पहुंचती है, वो साथी है जो बिना बोले भी साथ निभाता है, और वो सादगी है जो हमें बार बार अपनी ओर खींचती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है, रेडियो हमें एक अलग अनुभव देता है, एक अनुभव जहां हम रुकते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक कहानी, एक भावना और एक इंसान होता है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है। यह ना तो हमें दिखावे की दुनिया में ले जाता है, ना ही हमें किसी प्रतियोगिता में डालता है। ये बस हमारे साथ होता है, सुबह की शुरुआत में, सफर के दौरान या कभी अकेलेपन के पलों में। और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी ये माध्यम हमारे दिलों में जिंदा है। आज हमने अलग-अलग लोगों की बातें सुनी, युवा, छात्रा, क्रिएटर्स और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, और सभी की बातों में एक सुंदर सामान्यता थी कि रेडियो आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है। ये कभी यादों में, कभी संगीत में, तो कभी एक सुकून देने वाला आवाज के रूप में हमारे साथ रहता है। रेडियो के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये अभी भी चल रही है, अभी भी सुनाई दे रही है और अभी भी दिलों में बस रही है, क्योंकि जब तक कोई सुनने वाला है और कोई बोलने वाला आवाज है, तब तक रेडियो हमेशा जीवित रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ। धन्यवाद।
1: श्रोता मित्र, अभी आप सुन रहे थे युवा वाणी कार्यक्रम। इसी के साथ ही आपको बताते हैं कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के ठीक 9 बज रहे हैं, और कुछ ही पलों में आगे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, इन आंखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय हाय हाय दिल की हालत शराबी शराबी। जी हाँ श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला गीत, जी हाँ, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और आवाज दी है लता मंगेशकर और अन्य साथियों ने, संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से लीजिए प्रस्तुत है ये खूबसूरत गीत।

किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

जी हाँ, अभी हाँ आप आनंद ले रहे थे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के गीतों का। क्या हुआ, ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आशा भोसले। जी हाँ, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। श्रोता मित्रों, इसी के साथ है अब हम भूले बिसरे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं असली नकली फिल्म के गाने। लीजिए प्रस्तुत है गोरी जरा हंसते तो ये गाना। जी हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने।

गज भर की चुट्टिया न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। और छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू।

मिली बिजली से उजली, बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है इतनी शरीर है, बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया।

ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में पुनः स्वागत है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जी हाँ श्रोता मित्र, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। जी हाँ, हसरत जयपुरी द्वारा लिखा ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये खूबसूरत गीत लीजिए प्रस्तुत है।

इस खूबसूरत गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में श्रोता मित्र इसी के साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का दूसरा गीत और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये आखिरी गीत।

जी हाँ, आप आनंद ले रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में तीन देवियां फिल्म कैसे गीत का। इस गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुंचे हैं और साथ ही हमारे जाने का वक्त भी हो चला है। जी हाँ श्रोता मित्र, इसे तीसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए थे प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तानातुम और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, जाने से पहले आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहें अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधान

0: भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं। पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री है वो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, पर भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति। चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में, उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया।

0: किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है, तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें, बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स। वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स। वी विल पार्टनर विद अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग। इट इज मेकिंग द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी बिकम मोर रियल।
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत ने उठाई, उसके बाद UN सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर UN में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में UAE, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है उनके साथ किए हैं। अगर

0: यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे। और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था। इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना, भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human

0: सफरी।
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
3: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
2: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: थैंक यू सर।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के खिलाफ पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इस दौरान इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 17 ओवर में 7 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल का गंगई क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas, including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror.

0: financing networks. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization, FAO, at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है, जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: The Agricola Medal is the highest honor conferred by the Director General of the FAO. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat Nobona during a land handover ceremony to the Border Security Force BSF for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. India is set to remain the world's fastest growing economy, as the United Nations in its report projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the mid-year update to the World Economic Situation and Prospects report, said yesterday that India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continued to support its economy. The India Met Department has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। भारत और इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा और कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2032 तक $200 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की

0: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा केवल नीतिगत मामला नहीं है बल्कि मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज

0: सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिससे वो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटरले ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के मध्य वर्ष के अद्यतन पर कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक विश्लेषक और नीति प्रभाग के निदेशक शांतनु मुखर्जी ने भारत के विविध अर्थव्यवस्था संरचनात्मक सुधारों और बेहतर कर राजस्व को प्रमुख ताकत के रूप में उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के विविध ऊर्जा स्रोत, मजबूत शोधन क्षमता, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार तथा राजकोषीय लचीलापन, मध्य पूर्व में तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। भारत के बाद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था चीन है। रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि दर को भी घटाकर 2.5% कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए के कारण 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल साली ने कहा कि दोनों देशों ने 2032 तक 200 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में शुभारंभ के बाद इस व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध को काफी प्रगाढ़ बनाया है। राजदूत ने बताया कि इस समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि काफी सुदृढ़ रही है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स आज 4 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले एक दशक में भारत के नॉर्डिक देशों से निवेश में 200% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2032 तक 200 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अपराजिता नायर विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor Agricola medal, dedicates award to farmers of India. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. India and UAE set a target of $200 billion bilateral trade by year 2032. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes marked the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in area, including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agree to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talk,